0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द साथी और साकी, जब बाप दादा साथ है तो साकी बन की सीट सदा मजबूत रहती, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते, जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते, कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, हर एक कहते हैं मेरे साथ है, मेरा साथी है ना, ऐसे मन से कहते हो या मुख से, मन से कहते हो, पीछे वाले मन से कहते हो, हाथ अच्छा उठाते हो, हाथ हाथ हिलाती है माना हाजी, बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठी है और अपने परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाती है जो देखती नहीं है कि साथ में कौन है। बाप भी क्या करते, बाप भी साखी हो जाते, साथी से साखी बन के खेल देखते, ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो, बाप को अच्छा नहीं लगता। साखीपन का तख्त चोरों नहीं, जो अलग अलग बुशारत करती हो ना उसमें थक जाती हूँ। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, समान संपर्क का किया, थक जाते हो। एक ही बुशारत करो साखी का तख्त नहीं छोड़ना और कुछ दिमा तख्त नशी साखी बन के तख्त नशी आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे तभी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

याद करने वाले बच्चे बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

right.

सबके फेस से। खुशी की झलक, स्पष्ट थी।

Eso.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जमा हुए ऐसा कोई हो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

best thoughts. उसके ऊपर अटेंशन खिंचवा नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट जाता है। टाइम को दीवार पुरुषार्थ में लगाना है। छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प है, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते। इसलिए व्यर्थ को भी कम करो, टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे। हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाप दादा यही सौगात को समाप्त करो, अटेंशन दो, बुराई बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन देना है। पसंद है ना? पसंद है? हाथ उठाओ। पसंद है तो सब पास हो जाएंगे। पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करो ये पहले बताए, तो रिजल्ट संतुष्ट

रूप क्या मेरे पन की लिस्ट साधारण मेरे पन से लंबी। तो जहां भी इसलिए

Freddy. सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार

0: Chaya Mirena. Pop that cake combined rena. Chatra Chaya.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: व्यक्ति भी है मटेन, मटे मटे में मिल जाती, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे ज्ञान से ले आता है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Oh,

Sucks shanty.

就我老公什么时候

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

欲しくない。アブキン、コシギ、シゲル、テグカルケ、コトビコショジェ、シェセワカレンゲ、カレンゲ。

ちゃん。

Pachuca. Esa.

खुशी के स्थान पर आए। जहां खुशी है वहां सब कुछ। कभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा है, और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं लेकिन पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स, एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? आ गया याद, आ गया। अच्छा, एक शब्द है मैं अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वो ही होना चाहिए। और जब होता नहीं है, ये अपमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं देहमान में भी लाते, मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। परेशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Ehrwig.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

threesome.

जैसे ऑर्गन।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर वन

Murciélago.

Chubby. Chai de yeye. Slough. Gaga. Sakra ka rang bhi lag jata. Alabele pan maga. Ho jayenge. Dono yan bahut ho kiye. Tu samajhte hai. Samay par. सोचा तो है क्या है उस पर अटेंशन दे देंगे लेकिन यहाँ अटेंशन का नोट तो होता है लेकिन बहुत बहुत काल से रवासी चालू हो जाती है वो रिजल्ट ज्यादा है।

और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी, तो कोई भी अपने विशेषता को सदा काल का बनाना, ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है, बीच बीच में पेपर रामानुसार होते, इसलिए सदा टेंशन से बहुत अटेंशन देते भी है उनको, तो बाप दादा दीवर पुरुषार्थियों के लिस्ट में रख, अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय दीवार, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्यों के ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती। अगर ड्रामा में निश्चय तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय होती है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय किसके ऊपर विजय बनता, परिवर्तन करने में एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के से अटोल अचल बन जाते। ये निश्चय रहता है कि मैं कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है?

Yeah.

Bye.

Bob Goodson.

quiero.

0: mal, get off of me. Atma bhi pavitra banti. Aur atma ke saath sharir bhi pavitra banta.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी से कम छह मास में अपने को जीवन मुक्त
2: साधन के
1: बदमाशी करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे ना। और कला की बासी करना और कोई बासी नहीं, कृति कला की बासी, बहाने बासी, कमजोरी की बासी, ये सब समाप्त।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, वायुमंडल बनाओ। एक तो किस सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी, नवीनता करेंगे ना, जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत वेले बाप दादा देखते हैं, संकल्प अच्छे करते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर, सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब आप

Awesome.

0: Richard. To je practice. Mansa seva karne mein bhi sahyog denge. Aur powerful yoga ki sthiti mein bhi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Cushy.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरी कोई कहानी है, मैं ही कर सकती हूँ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मना नहीं होते, मणि होते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए इस दिन की, तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता दिन में विशेषता धारण करे। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे पाप समान बन जाना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से रुका हुआ जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, सब चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे है, पहुंच ही जाएंगे हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। तीव्र पुरुषार्थ ही बनू, पुरुषार्थ ही तो है, लेकिन चेक करो तीव्र पुरुषार्थ ही है। बाप दादा को प्रिय कौन लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थ ही तो हर एक बच्चे को क्या बनना है, तीव्र पुरुषार्थ ही बनना है। हाथ उठाओ, बनना है, बनना है या बन के चल रहे हो? ये लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, तीव्र पुरुषार्थी रहना ही है, औरों को भी साथ देना है। ये लक्ष्य है, जिसके दिल में ये लक्ष्य है वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी उठाते। चलो, थोड़ा ठंडा है तो दीवार कर देना। योग दिन प्रतिदिन माया भी अपना सब बच्चे को दो। आपका टाइटल क्या है? मायाजीत। कौन मायाजीत बनने वाले हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी सभी ने हाथ उठाए। बाप दादा को खुशी होती है कि हिम्मत तो है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप तो है। हिम्मत नहीं हारना, बाप दादा का सहयोग पहले, हिम्मत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सिक्समें नजदीक आ रहा है, इसलिए ये एकाग्रता का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। इसको हल्का नहीं करना, एक सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा, इसलिए बाप दादा पहले से इशारा दे रहा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपका वायदा भी है जो सच्चे दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया के हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं तो आप सबको दाल रोटी भाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। किसी भी हालत हो, ये गुड़ सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, ये बोर्नवीटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आईवेल में ये बोर्नवीटा बहुत काम में आएगा। चार बातें याद करना, ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो, चार ही बातें हैं सच्चाई। छोटी करेंगे तो सामग्री सब छोटी हो जाती।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने की वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा, आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेले बन की, करवे बन की, कब तक। बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक। आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा। क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे, तब समापति समय लाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगा हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया, कारण को कारण ही बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना बाबा आपकी क्या आशा है, तो आज बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सब ठीक आराम से रहे हुए हो? मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या चाहिए? नाचो गाओ, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? अच्छा नहीं, अच्छा लगता है ना? दिल में खुशी है ना, तो खुशी का चेहरे पर आता है मुस्कुरा। मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कुराना सीख।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: खुशी में नाचते भी रहता और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी सम्मान संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कौन का गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई कोई इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ कामना करो कि ये मेरा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाए। इस भाई बहन का भी मूर्ति कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं। तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, सभी विश्व परिवर्तक है। धंधा आपका क्या है? विश्व परिवर्तक है ना। सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा लेकिन हर जन्म में राज परिवार राज अधिकारी आत्माओं के सभी संबंध में हो विश्व परिवर्तन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी समय पर मान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्यारे प्यारे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं। सुंदर दृश्य आपने

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है, इसलिए अपने आप एक रखिए, एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो चली देंगे। I

0: अटेंशन खिंचवा रही है। कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यक
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रिजल्ट निकली, लेकिन फाउंडेशन पवित्रता, स्वच्छ हो, साफ हो, और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्र,
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं वर्तमान समय के पर

chico.

Sir.

Ups.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पत दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पत दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पत दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया। देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Peace.

0: जैसे शरीरक दृढ़ शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की दृढ़ मन को शक्तिशाली बनाने वाली मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी। बच्ची को चक्कर लगाए तो कहाँ कहाँ रही है, लेकिन बाप दादा उन Yeah.

What the

0: उसके लिए थैंक्स।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संस्करण का वो मेरा है मेरा है किसका है ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार कहते हो मेरे संस्कार तो ये मेरा शब्द ये ही जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है ना वो भी पानी में और आपने मेरा बना के रख दिया है तो जहाँ रावण की चीज होगी वहाँ अशुद्ध संस्कार कटे रहेंगे क्या रहेंगे और राज किसका है शुद्ध का तो नहीं है ना तो राज है अशुद्ध जैसे सोना संभाल के या हीरा इस

स्वादिष्ट बन जाए। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार विशेष है, विश्व कल्याणकारी। शुभ चिंतन धारी, सबके शुभ भावना, शुभ कामना धारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार। बाकी मेरे नहीं, और यही अशुद्धि जो है अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालते। तो जो बनने

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलते हैं ना, तो जैसे विस्तार फिर क्या होता है ना, तो बीज उसमें छिप जाते हैं। ऐसे वो समझते ऐसे है कि हम विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है, जो फिस्ट बॉल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, दिमाग की एनर्जी भी ज्यादा बोलने वाले की कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देती है मेरे को टाइम नहीं है इतना सुनने का, लेकिन जब खुद सुनाती है तो टाइम भूल जाते हैं। इसलिए अपने खजानों का जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अखनों की, दूसरे
4: इस भ्रष्टाचार अत्याचार

Rivera.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये श्राप नहीं दे पुण्य का

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

चाहिए।

सब सब

जीवन मुक्त, ब्रह्मांड जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्रह्मांड श्रेष्ठ जीवन मुक्त।

श्रेष्ठाचार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आराम का अर्थ है आराम फिर करना, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो आराम नहीं करना धनलपन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी थोड़ी कित-कित हो तो अभी जाके पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे निश्चय जारी निश्चय में पास होना है व तीन में दो में नंबर वन होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती, प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गए। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती, माया भी कहती कि मैं जानती हूं कि मेरा पाठ अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते। बिठा देते मेरे को तो अपना राज लाने में ये चार निश्चय परसेंट में तो समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ आर्डर करे बच्चे अगर ये रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को आर्डर करें करें। हाथ उठाओ, तैयार हो, ऐसे नहीं हाथ उठाओ। पेपर आएगा, आएगा पेपर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं, तो अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ती भी है, लेकिन किमिया और सिक्किया, किमिया रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किया के, तो सिक्किया सिक्किया की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्किया साथ साथ हो।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बोलने की आवश्यकता नहीं।

मैं आगे बढ़े।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर बाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम,
4: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उत्साह है तब तो आ तो रहे हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी कभी पापा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आगे?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो,
3: सोचते हो,
1: खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं, स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही। प्रोग्राम भी किया लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, कोई अड़चन नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमाओ और उनको भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा, बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है। तो अगर कोई आया नहीं सीजन का फल है, सीजन आएंगे, दिल शिकस्त नहीं हो, क्योंकि श्रीमत को तो मानना है, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ, करते जाओ और ये पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी जो आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पांव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पांव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

समय नहीं।

Cerquero for me.

Guck mir.

कि जैसे सर्विस के फलक झलक आप लोगों को दिखाई देती है और बहुत है सेवा का, ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति का प्रभाव क्यों आजकल से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है, ये निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण ते अपमान का मैं शब्द है, ते पान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ ये मैं, लेकिन ते पान के मैं शब्द अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिरा। तो बाप दादा आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको योग अग्नि में जलाओ, अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पका करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है, तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो जलाना है, क्योंकि ये भी तो भोज है ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समर्पित

ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान, वह विशेषता।

Bravo, Denko. Oscar.

जो करता मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रायल में बन और Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण नहीं होता है।

是飞机。Пока. Это на пока. Куси коча ней ней дина. Кусь.

जितना

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लगता है अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। में रह जाता है वो फ्रिश्ट
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सच्चे बाप से वेरीफाई कराया

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये रोज हर एक को काटनी चाहिए, ऐसे नहीं हम बिजी है बीच में, समय पर समय एक सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो बात भी कर रहा हो, लेकिन इससे बहुत मदद मिलेगी, नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विधेय बनने में टाइम लग जाता, और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब जाए उसी समय हो जाए, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है, अचानक के पेपर में ये विधेयपन का अभ्यास बहुत आवश्यक, बनने का पुरुषार्थ ही करते रहे तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी, फिर सेवा में मेट।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है।

0: sé qué decir. Mira, papá.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने, समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों को

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सब? बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाता है वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी। तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

समय का खजाना, संकल्प का खजाना।

हाथ जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में साधारण

Fé.

suami sama Faredi jodoh bercebi teachers biye kerana teachers itu samar panuhiye kumanya biye perverti vale biye sab Faredi acha sabhi ko chance diye ye bahut acha bachon ki to kafi samay se aari si thi tina bache humko kab chance milega milne to acha hua sarva Faredi ka gulstasta baap ke saamne hai bachche haath uthao jo bachche hai wo haath uthao achhi tarah se haath hilao dikhai de अच्छे अभी नीचे करो नीचे नीचे करो बच्चों से तो बड़ों का प्यार होता ही से भी बच्चों का प्यार और सभी बच्चे आज के ब्राह्मण हैं कल के क्या बनेंगे बोलो बच्चे कल क्या बनेंगे देवता बनेंगे अच्छा कौन सा देवता बनेंगे पता है बच्चों में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे समय पर आप मूर्ति कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे जैसे अभी अनुभव करती है ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे स्थिति, पावरफुल स्थिति, आपका अंतम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। आता है अपना रूप सामने, इमर्ज करो, कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे, सकाश दे रही है, तब कहेंगे जो आप गीत बजाते हो ना, जाते और न शक्तियां आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः सिद्ध हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Great.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ശ്രേഷ്ഠപ്രാലവത് ചമാക്കാക്കത് ദുസ്ര

Peace.

Sada. Abanico. Kushnema. Kushnasib. Yeah.

sarva kasanoko. Chamakarniki. Chabiyeh.

сватба. Чек карте жам. Арча бика номер

Chamito Hernández.

0: retien. Te rechaza. Te rechaza. Que si me calle me.
1: Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

sabe?

आप सबको ये तीन तख्त प्राप्त है ना, सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तक। तो जी करो, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है।

0: 就是的。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आगे के लिए अब दीवार पुशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं वो लोगों विशेष दृढ़ता की चाबी की So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से

उससे नहीं भगाते, तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है, माया आती है, सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं? अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। के करने लग जाते हैं

Wasser.

चिकरों कितना समय बीत गया, अभी समय की समीपता

Esse samek.

0: आवश्यक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कमी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने

last time. Last time.

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सौगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए

अभ्यास करो। अभी फास्ट दीवार पर शरत

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं। सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Beep up.

家店呢，叫个阿伯，阿伯那边不奈为不济，那费的，阿伯。Bye.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए। समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्मा ही हो, विदेशी आत्मा नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और बढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, हर बच्चे को आज विशेष

और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट

Nossa.

0: अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता व्यर्थ संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा पन, पाप का प्यारा पन उस
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर तेरा मेरा, तै और मैं। इस शब्द के अंतर में Fica.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाता है। इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद करो।

0: सब कुछ नीचे ऊपर हो तो सम्मान और प्राप्तियां याद करना, पाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये सब साधन आप बच्चों की सेवा के सहयोग के लिए निकले। माँ बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते हैं। सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बनाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों के फटाफट कर रही है। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना का। सेकंड भी निकालो, अभी साधन पर हाथ है, और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे एक सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। बिजी, बहुत बिजी, शिकल भी बिजी कर देते हैं। बाप दादा मानते नहीं है, जो चाहे वो कर सक, अटेंशन कम है। जैसे वो अटेंशन रखते हो ना, 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है, इसीलिए बिजी होते हो ना टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो, 10 मिनट में ये काम करना है, वो भी तो बनाते हो ना टाइम टेबल। इसमें 1-2 मिनट पहले से ऐड कर दो, 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं, 8 मिनट लगना है। तो 2 मिनट साधना में लग, ये हो सकता है, हो सकता है। इससे पूछते हैं गायत्री से, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी, बहुत बिजी। बाप दादा चेहरा भी देखते हैं उस समय, फोटो निकालने वाला होता है। कितना भी बिजी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है, उठी भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है। और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वो दूर हो जाए, खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं हो। काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं कि काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो, होता है ना ऐसे। एक्शन कॉन्शियस की मार तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार और एक्शन कॉन्शियस की मार्ग में अंतर तो होगा ना कि नहीं होगा, होता है, फर्क होता है। तो अभी बैलेंस लिंक को नहीं तोड़ो, नहीं जोड़ते रहो। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस जितना समय निकाल सको, सेकंड निकालो, मिनट निकालो, निकालो जरूर। हो सकता है पांडा, हो सकता है टीचर्स, हो सकते हैं और जो ऑफिस में काम करती है वो, हो सकते हैं। सकता है। हाथ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा,
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
3: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Suck.

इतनी अटेंशन से

Christmas.

Beep.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

腰バッドね。あがるまの。あぶけ、あすこし。Stay.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते

से कोई बच्चों को कहां से चुनकर अपना बना लिया। पांची कन्नों से बच्चों

सबसे अमूल्य।

Sorry.

0: बच्चों को ही प्राप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी कमजोरी आ जाए, आने नहीं देना, गेट बंद। गेट तो पता है ना, बंद करो, डबल बंद, डबल ताला लगाना। आजकल सिंगल ताला नहीं चलता। एक याद का, एक मन को सेवा में बिजी रखने का, ये तो अलमेटी ताले लगा देना। गाडरेज का नहीं गाट का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सोचो आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रियलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितने चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती। उस चमक की रियलिटी पर्सनल दिखाई देती है। और पाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो, जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं।
3: बने हो, देवताएं बने हो,
2: सुंदर। पर्सनालिटी है, मूर्ति होंगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बोता बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है ना, बढ़िया कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, चित्रों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत बना रहे योग दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा। और भक्ति के
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की सभापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों हिम्मत दे रही है कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अब इस समापति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, पाए का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ, मन का हाथ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ちゃがった。

好

Só que, preta. Sare calabki. Pra la bota. Rajki. Or pochegi. समय

Yeah.

Kansky. Dodzi. Nemecek.

ASMR.

要是这样It's got sadness.

दी जाएंगे। और सेकंड

उस पे जितने रिजल्ट चाहते हो उसे अच्छा

0: sem akarnék. Parivartan karnék. Aur attention.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sí.

ऐसे सबसे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

करने से।

suite.

बच्चों का खेल देखते हैं। सामान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं।

जरूरी, क्योंकि सबसे

Volta-te.

Undertaker.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गए हैं, तो रावण की चीज वही चीज हो गई ना। चलेंगे ना, गोली चलाते भी है और रंग लगाते भी है। तो आप सभी होली पर क्या चला

So

0: verbieten.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेंगे ऐसे कि पेशेंट से पूछेंगे, कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही, बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में इष्ट देव बनना, तीनों ही संस्कार सिर्फ होनों के लिए नहीं है वो, तो दिन

0: faptă de nedică. Ciu prămaba a fiertă voi. Artati cu trăștiti. O să trăștiti. Fel power se. Apana pot. Sarva sanei. Sarva samrat. Sarva karya karta. Nemetor nirman. Isme Brahma bhav ko pura pura. Follow karte hue. सारे ब्रह्मांड परिवार में शक्ति बड़ी और बाप दादा के अपने दादियों के साथ साथ रहके बहुत अच्छा पाठ बजाया. अभी भी सुखे में आपके साथ पाठ बजा रही. बाप दादा भी दादी के कमाल का थे. सबको संगठन के बंधन में सने और सहयोग के आधार से बांधा और ये अमर वरदान. सबका प्यार अच्छा है ये देख करके भी बाप दादा को खुशी.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सोचते हो ना, सबसे आगे थे आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है यहाँ, सरकारी दुनिया है ना, सरकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन हो सकता है हो भी रहा है, हो रहा है कैसे कि पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देते। तो सबसे सभी बहने तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो, नोरे रतनों। सुना पीछे वालों ने, दूर नहीं हो समीप, शरीर पीछे बैठी है लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो नजदीक वालों को इस स्थूल नैनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है, इसलिए बाप दादा नैनों में समाले थे। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Direct data silo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय अनुसार तीवर पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ सेकंड में बिंदी लगाना, समान तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बच्चा का रूप देख
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पोजीशन

0: ከስቶ ጀና ተፎ ፓወርፉል ዋጆ አፍኮ ተፈደልያ አፓፕኔ ስዋማን ኪሲ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

0: पैसे नहीं देखना, देखे बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ले गिफ्ट दी, अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Siéntelo.

前

Känner dig. Yeah.

y

0: Menikahmu.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अखबारों की सेवा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर, इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां जाओ वहां स्थित कर सकते हो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्योंकि संगम युग के

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Chatty.

した気して किसी भी प्रकार के समस्या को सहज समाप्त कर सकते जहां संतुष्ट है।

is a me. Vayumandalo. Que sabe.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा।

0: अवश्यमे विश्वराज अधिकारी और द्वापर से कलयुग अंत तक पूजन के अधिकारी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन, कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे वायरलेस या टेलीफोन, ये टीपी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए। इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार खत्म हो नहीं है, ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट, जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। तो क्या आपकी अध्यात्मक लाइट, आत्म लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सके। अभी क्या भी कोई मिसिंग है जो पढ़नी चाहिए।

0: normal. Portal. Monopol ki badi mehman. Rishti wale bhi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: jai fresi adkar mere jaise ye stol ka pedriya haath bahwa apne control mein rehte hain aise man bodhi sanskar jab jaye jaise jaye rolling power aur controlling power abhi dekhne mein number four संस्कार मेरे हैं, बुद्धि मेरी है, तो कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर, नंबर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहां है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब नौ लाख आएंगे तो साधन सुधे ही जुट जाएंगे। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। सब साधन मिल जाएंगे, बने बनाए हाल आपको मिलेंगे। बनाने नहीं, सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो सफलता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

करता रहता हूं।

0: सहज परिवर्तन करने में मदद।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yes.

0: जो चाहिए वो दे सको, अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन और आलस और बहानेबाजी खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल खूब देख के बचोगे। Yes.

आज पर

0: जो चार को हल्का कर देते हैं, तो क्या हिम्मत है जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष बूढ़े हो रहे, वो तो 3-4 मास के बच्चे के करते हैं, तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे, हाथ बाप दादा नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, बाहर जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प
1: किताब, बहुत बड़ा किताब है, उसको

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक सांस शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सफलता स्वरूप ही सफलता।

Sada.